0: success from day one. For further details, call us at 056-515-039 or 98-550-31039. Log on to www.everestpreschool.edu.np or find us on Facebook at www.facebook.com/Everest Preschool Nepal. Everest Preschool, the first step to success. Promoted by Stars Montessori Academy, Pokhara and Bharatpur.
1: ग्लोबल करियर को शुरुआत होटल र आईटी संग सीप शिक्षा र संभावना को संगम आरंभ कलेज
2: जहां अनुभवी शिक्षक को मार्गदर्शन में प्रयोगात्मक र व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली संगे आधुनिक प्रविधि संग सीखने अवसर मिल्छ
1: त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट सम्बन्धन प्राप्त बैचलर इन इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बीआईटी र बैचलर अफ होटल मैनेजमेंट बीएचएम विषय में सीमित सीट में भर्ना खुले हुआ सीट सुरक्षित गर्नुहोस्
2: आरंभ कलेज जहां सेवा कला र सूचना प्रविधि संगे फस्टाउँछ नवीनतम नेपाल कला
1: भर्ना एवं अन्य जानकारी का लागि आरंभ कलेज भरतपुर 11 नहर चोक बाईपास रोड संपर्क नंबर 056-13-664 मोबाइल 98-550-33-664 र 98-550-33-559

0: कालिका ट्राफिक अपडेट।
1: कालिका ट्राफिक अपडेट को साथमा
2: ठुक्क साथ व्यापार व्यवसाय गर्न, आर्थिक जोखिम कम गर्न विश्वास हामीलाई गर्नुस्। युनाइटेड अजुर इन्स्योरेन्स, युनाइटेड बाई ट्रस्ट।

0: का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। United Azure Insurance, United by Trust.
1: 95.2 Kalika FM, Hridayko Spandan.

0: अब थन्डुबाम रेगुलर र अल्ट्रा बजारमा उपलब्ध छ।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि। घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: बर्जर पेंट्स
3: बारम्बार पेट दुख्ने वा कलेजोको समस्याले हैरान हुनुहुन्छ?
4: अब उपचारको लागि विदेश जानै पर्दैन।
3: पेट कलेजो तथा पाचन रोगको विश्व स्तरीय उपचार अब नेपालमै।
4: उन्नत प्रविधि, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक र भरपर्दो उपचार सेवा।
5: नेशनल ग्यास्ट्रो लिभर सेन्टर लगनखेल ललितपुर।
6: सम्पर्क फोन वा व्हाट्सएप नम्बर 97651979770।
4: नेशनल ग्यास्ट्रो लिभर सेन्टर पेट्रो कलेजको भरोसा योग्य उपचार गन्तव्य।

0: महाकाल्य भरतपुर क्लिनिक 24 कोठी भरतपुर, सम्पर्क 98023 64 542।
1: काली का FM, हृदयको स्पन्दन।

0: रियल फूड्स को उत्कृष्ट उत्पादन बुलबुल ब्रांड का मसला खुर्सानी बेसार मीट मसला मोमो मसला मरीच मसला जीरा पाउडर धनिया पाउडर र दालमोठ सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ।
1: 95.2 कालिका एफएम हृदय को स्पंदन।

0: का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। United Azure Insurance, United by Trust.
1: 95.2 Kalika FM, Hridayko Spandan.

0: ठुक्का साथ व्यापार व्यवसाय गर्न, आर्थिक जोखिम कम गर्न विश्वास हामीलाई गर्नुहोस्। युनाइटेड अजोर इन्स्योरेन्स, युनाइटेड बाई ट्रस्ट।
1: रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि। घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: बर्जर पेंट्स।
3: FM, हृदयको स्पन्दन।

0: हौ 95.2 कालिका एफएम हौ
1: कालिका एफएम कुचबाङ निसाङ पीसीएलए मासबार मई झाङ मई ढुट।

0: स्टुडियो टाइम चेक यो समय
1: जोर्नी पुनर्स्थापनामा समर्पित एवं स्त्री प्रसूति तथा निसन्तानपन सम्बन्धी समस्याको उपचार वरिष्ठ महिला विशेषज्ञ डाक्टरबाट गरिने समिट हेल्थ केयर हस्पिटल प्राली भरतपुर 9 केन्द्रीय बस पार्क चितवन।
2: उच्च शिक्षा दिनको लागि जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, साउथ कोरिया, युरोप लगायतका देशहरूमा जानु परेमा, आईएसपीटी कोरियन अङ्ग्रेजी भाषा कक्षा लिनु परेमा सेन्ट्रल एजुकेशन एन्ड माइग्रेसन सर्भिसेस प्राली भरतपुर ओह्रालो नारायणगढ।
0: It's 12 a.m.

0: मेरो छोरीको मैसरी।
1: आहा,
0: मसँग धेरै पैसा भएपछि मेरो छोरीलाई सहारा गएर भुवावाला पुतली ल्याउने है।
1: मैसरी, ए मैसरी, आमा मैसरी।